0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111
3: नमस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं धर्मेंद्र मणि राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम है और उनके द्वारा लिए गए विषयों का विस्तार है। इस बार मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय खेलों के बारे में बहुत सी बात की थी। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था।
4: मेरे प्यारे देशवासियों हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है।
3: तो श्रोताओं अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी के मन की बात का वो अंश जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय टीम को देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वचनों के बाद तो ग्लासगो में कमाल ही हो गया। हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ शामिल किए गए खेलों में पिछली बार से ज्यादा पदक जीते बल्कि मैदान से पोडियम तक की इस यात्रा में कई इतिहास भी रच दिए। इस दौरान खेल के मैदान पर भारत की बेटियों की ताकत को भी पूरी दुनिया ने देखा। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ भारतीय खेल प्राधिकरण साई के उपमहानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, आपका भी बहुत स्वागत।
6: धन्यवाद।
3: तो अब मैं अपने मन में उठ रही जिज्ञासा और सवालों के साथ साथ आप श्रोताओं के प्रश्नों को लेकर भी तैयार हूं अपने स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से उसका जवाब जानने के लिए। सवालों की शुरुआत करते हैं मयंक श्रीवास्तव जी के साथ। मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ साथ देशवासियों की तरफ से ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक के लिए मैदान पर पसीना झोंक रहे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इन शब्दों ने जैसे जादू की झप्पी का काम किया और उनके शब्दों के बाद ऐसा असर हुआ कि पदकों की झड़ी सी लग गई और हमारे खिलाड़ियों ने कमाल ही कर दिया। पिछली बार के पदकों का आंकड़ा पीछे छूट गया, क्या आपको लगता है कि कमाल प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान शब्दों का असर था?
5: निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों के सबसे बड़े लवर हैं और वो बहुत चाहते हैं कि भारत के खेलों की उन्नति हो और उसका जीता जागता उदाहरण है जिस प्रकार की स्कीम भारत सरकार ने उनके मार्गदर्शन में लेके आए हैं जो कि नया खेलो इंडिया है और जो टॉप स्कीम है। आप अगर देखेंगे इन खिलाड़ियों का जो भी इनका रिकॉर्ड है और जहां से भी उनको सहायता मिली है, यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम का बहुत बड़ा योगदान था। तो न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों की प्रेरणा इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पूंजी थी बल्कि वो जो योजनाएं लेके आए हैं खेल के क्षेत्र में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए।
3: और राजा रमन जी, अब तो ये जाहिर सी बात है कि जब खुद प्रधानमंत्री जी खेल में इतनी रुचि लेते हो तो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप मानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट लेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा तो

0: आएगा ही आएगा। 2014 से ये देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा ही खिलाड़ियों से गेम्स के पहले मिलते हैं, गेम्स के बाद मिलते हैं। खिलाड़ी को पता है कि देश के सबसे बड़ी व्यक्ति का प्यार उनको मिला है, उनके मार्गदर्शन में अच्छे नतीजे आए हैं, चाहे वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स की बात क्यों ना हो, पेरिस की बात क्यों ना हो, पिछले बार एशियाई खेलों की बात क्यों ना हो, या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल की बात क्यों ना कर ले। खिलाड़ियों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा देश हमारे साथ है। जब भारत सरकार का इतना सपोर्ट मिलता है, एक टाइम था जब आपको 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, आप अपना प्रपोजल दे रहे और प्रपोजल के 3 महीने बाद आपको पता चला कि क्लियरेंस आधा हुआ है या नहीं हुआ है। आज की तारीख में क्लियरेंस 3 या 4 दिन में मिल जाता है, खिलाड़ी जब मांगता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और जो सॉफ्ट पावर है खेल, इसको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, उसका पूरा फायदा भारत देश को मिल रहा है। आप देखेंगे पिछले सालों में भारत का जो स्तर है वो उठता जा रहा है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: और मैं जी, हमने अन्य क्षेत्रों की तरह नए भारत में खेल के क्षेत्र में भी बदलाव को देखा है और महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी के मैदान से पोडियम तक की सोच और खेलों को भी अन्य क्षेत्रों की तरह महत्व देने की रणनीति का भारत के खेलों पर कितना सकारात्मक असर हुआ है?
2: निश्चित रूप से, पहले भी बात कर चुका हूँ उनके विजन की, उनकी दूरदृष्टि की और किस प्रकार से भारत सरकार ने नई योजनाएं ले आई है। खेलो इंडिया और टॉप्स, ये दोनों स्कीम इसी मोटो को चरितार्थ करती है जिसको आपने अभी कहा, मैदान से पोडियम तक को। क्योंकि खेलो इंडिया आपको ग्रास रूट क्षेत्र में सपोर्ट प्रारंभ करती है, और ये पहले जो खेलो इंडिया का स्वरूप था, मैं उसको 360 डिग्री सपोर्ट बोलता था। एक खिलाड़ी को, इकोसिस्टम को वो 360 डिग्री सपोर्ट करती थी। अभी जो नई खेलो इंडिया कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में पास की है, वो 720 डिग्री सपोर्ट है। और टॉप्स को तो मैं तथास्तु स्कीम बोलता हूँ। शायद ही ऐसी योजना कभी भी आई हो कि जिसमें खिलाड़ी जो कि टॉप्स एथलीट है, एलीट एथलीट है, टॉप्स का कोर एथलीट है, वो कुछ भी मांगता है जनरली उसको दिया जाता है। ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम इन दोनों योजनाओं ने खड़ा किया है कि आज खिलाड़ियों के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे और किसी भी करियर के उनके किसी भी पड़ाव पे जो समस्याएं हैं उसका कोई असर नहीं होता है
1: जी। और राजा, एक कहावत बड़ी मशहूर हुआ करती थी या है भी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। क्या आज भी ये कहावत सच दिखती है? अगर नहीं तो आम लोगों के बीच खेलों को लेकर सोच में कितना और कैसा परिवर्तन आपने महसूस किया है?
0: रविंद्र, पूर्ण रूप से बदल चुका है। आज की तारीख में आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब वाली बात है। ये मेरी बात नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात है। और ये सच है कि खिलाड़ी को आज पता है, खिलाड़ी के घर वालों को पता है कि आप खेल के माध्यम से अपना पूरा जीवन संभाल सकते हैं। आपको पढ़ाई की जितनी जरूरत थी वही जरूरत आज खेल की महसूस हो रही है लोगों को। अगर आप एक्सेलेंस की ओर बढ़े जा रहे हो तो आप पढ़ाई शायद कम कर लें, लेकिन आप खेल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल को जीत सकते हैं, राज कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों को समझ आ गया है। और अगर हम खेलो इंडिया मिशन, जो नई मिशन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, उसकी अगर बात करें तो पिछले खेलो इंडिया स्कीम से अगर कंपेयर करते हैं तो 8 गुना पैसा बढ़ा है 5 सालों में। करीब 36,000 करोड़ की बात हो रही है। ये कम पैसे नहीं होते धर्मेंद्र। एक देश की सरकार अगर जुड़ जाता है खेलों के साथ इस तरीके से, जाहिर सी बात है कि आगे ही बढ़ेगा देश। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एथलीट का डेवलपमेंट हो, चाहे कोचेस का डेवलपमेंट हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का या स्पोर्ट्स साइंस की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस स्कीम का, तो भारत 2036 के जो ओलंपिक गेम होपफुली भारत में ही आयोजन होंगे, वहां पे अच्छा प्रदर्शन, अच्छे नतीजे, 20 मेडल उनके आसपास या टॉप 5 वाली पोजीशन का पूरा उम्मीद लेके बैठ सकते हैं
1: जी। तो मैं जी, पहले हमारे खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंचते थे लेकिन पोडियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। इसकी वजह खेल संसाधनों की कमी थी, मैदान की कमी थी, और साथ ही साथ खेलों के जरिए नौकरी न मिल पाने की एक जो सोच थी वो बड़ी समस्या थी। बहुत से बच्चे इन दुश्वारियों के चलते चाहकर भी खेलों की तरफ नहीं जा पाते थे, करियर नहीं बना पाते थे। अब नए भारत में इन बुनियादी मुद्दों पर कितना काम हुआ है?
2: मैं तो ये बोलूंगा कि आपने जो पहली लाइन बोली कि खिलाड़ी मैदान तक तो पहुंच जाते थे, वहां से ही शुरू करता हूँ। एक्चुअली मैदान तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वजह ये थी कि अगर आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, हमारे करीब 750 से थोड़े से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जगह खेलों का एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उद्भूत ये योजना है, इसमें सबसे पहले ये कमी महसूस की गई कि सारे जगहों पे, सारे स्थान मैदानों पे कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, तो ये तय किया गया कि हर

0: जिले में हम कम से कम एक खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे। खेलो इंडिया सेंटर वो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होगा, वो जगह होगी जहां पे खिलाड़ी आएगा और खेलेगा। कम से कम 25 खिलाड़ी वहां पे खेलेंगे एक पर्टिकुलर खेल का, हर जगह पे एक एक खेल का हम सहायता देंगे। तब ये दूसरा भी प्रश्न आया कि भाई इतने कोच हैं, कोच ही नहीं थे, तो जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको पास्ट चैंपियन एथलीट बना करके उनको एम्प्लॉय किया गया, उनको बतौर कोच इन खेलो इंडिया सेंटर्स में रखा गया, तो पुराने खिलाड़ियों को भी रोजगार मिला। तो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ हर जगह पे, ग्रास रूट पे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ग्रास रूट पे करने से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा एलीट लेवल पे भी होना चाहिए। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस हर राज्य की राजधानी, हर यूटी की राजधानी में ये खड़ा किया गया। भारत सरकार ने इसका पैसा दिया और इसमें स्पोर्ट्स साइंस जो अब तक भारत के खेलों में सम्मिलित नहीं होता था उसमें बहुत बड़ा एक निवेश था। इसमें स्पोर्ट्स साइंस के जो जितने पद होते थे भारत सरकार सभी का पे देगी और इत्यादि इत्यादि मशीनें देगी,
1: जी
0: उसका सामान देगी। तो एक एलीट सिस्टम भी खड़ा हो गया। भारत सरकार को यह भी गुमान था कि सारा कुछ वही नहीं कर पाएगी, तो कुछ लोग प्राइवेट लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको खेलो इंडिया अक्रेडिटेड अकेडमी बनाया गया। तो इस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे तो इनको खेलने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव वाला एक हमें खेल का प्रतियोगिता देनी चाहिए। तो खेलो इंडिया गेम्स का एक सिस्टम शुरू हुआ, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, पैरा गेम। विंटर गेम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले जब से ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया में, भारत में कोई जानता नहीं था विंटर गेम। नेशनल गेम्स तो होते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स के साथ पैरा गेम्स भी होते हैं, परंतु ये प्रथा नहीं थी। और ये पैरा गेम्स शुरू हुआ खेलो इंडिया में, वो भारत में एक तरह से नेशनल गेम है पैरा स्पोर्ट्स में। तो अब यहाँ से खिलाड़ी जो खेले, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दिया, अपनी कम्पिटेटिव स्किल को निखार सके, उनको एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एंड डेवलपमेंट वाले वर्टिकल में से उन्होंने उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने, उन खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट बनाया, जिनको ₹10,000 आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको वित्तीय सहायता करीब 6 लाख की वो भारत सरकार ने दिया। 360 डिग्री सपोर्ट था, ये वो सिस्टम है। अब इसी में से जो खिलाड़ी उन्नति किया वो टॉप्स जैसे सुपर एलीट लेवल पे आ गया। टॉप्स में एलीट खिलाड़ी जो मांगता है जनरली वो मिलता है। अब नए वाले सिस्टम में क्या है, 720 डिग्री सपोर्ट कैसा है, पहले जिन चीजों की चिंता की थी उससे आगे बढ़ गए। हमने देखा कि आईटी सपोर्ट नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को नहीं है, साई को नहीं है, तो इसमें नए वाले खेलो इंडिया में आईटी सपोर्ट का एक वर्टिकल खड़ा हुआ। सबसे बड़ी समस्या इस देश में है कोच की, कोच कहाँ है और स्तरीय कोच कहाँ है। तो कोच का विकास के लिए एक कोच डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट का वर्टिकल खड़ा हुआ। तो सिर्फ कोच की बात नहीं है, स्पोर्ट्स साइंस जिसकी मैंने अभी बात की उसका पूरा एक सिस्टम खड़ा होगा, इको सिस्टम खड़ा होगा। उसमें लोग खड़े होंगे, वैज्ञानिक खड़े होंगे, बायो मैकेनिक्स खड़ी होगी, मैसर खड़ा होगा, न्यूट्रिशनिस्ट खड़ा होगा। अब ये पूरा एक सिस्टम जो है बन के आ रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक वर्टिकल है खेलो इंडिया का, उसने पूरे देश में जो अधोसन संरचना है उसकी एक समझ लीजिए उसमें क्रांति ला दी है। पूर्व में 300 से भी अधिक अधोसंरचनाएं खड़ी हुई थी, नए वाला जो खेलो इंडिया है इसमें और ज्यादा इसमें सपोर्ट है और त्रिस्तरीय सपोर्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमने पहले खेलो इंडिया सेंटर की ही बात की जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की, अब नए वाले में स्कूलों में भी खेलो इंडिया सेंटर होंगे। स्कूल में न बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि खेलेंगे भी और भारत सरकार उसको फंड करेगी ऐसे खिलाड़ियों को। साथ ही साथ और बहुत से कॉलेजेस उनको भी खेलो इंडिया सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना पाएंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा हो रहा है। पहले तो मैदान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब न सिर्फ वो मैदान पे पहुंचेंगे बल्कि अपनी खेल प्रतिभाओं को कंपटीशन और लीग से निखारेंगे, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा, टैलेंट स्काउट होंगे, कम्युनिटी कोच होंगे जो उनकी प्रतिभाएं देखेंगे, ग्राम स्तर पे भी देख पाएंगे क्योंकि कम्युनिटी कोच और जो टैलेंट स्काउट है वो ग्राम ग्राम स्तर तक जा सकेंगे। जोनल टैलेंट सर्च कमेटी बनेगी और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी तो पहले से थी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक इको सिस्टम खड़ा हो गया है जिसने भारत के खेल जगत को एक क्रांति उसने कर दी है।
1: बिल्कुल क्रांति आई है। और जो खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव हुआ करता था कि खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो सारे दबाव उनके मन से हटे हैं। और हमने बहुत सारी गंभीर बातें कर ली हैं और इन गंभीर बातों के बीच अब थोड़ा सा मूड को हल्का किया जाए और हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, और अगर अभी हम आपको सुनाना चाहें तो वो कौन सा गीत होगा?
0: एक्चुअली मैं बचपन से बहुत सारे गाने सुनता हूँ, अगर आप उनमें से एक सुनने को बोलते हैं तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार। मैं तो कुंदन लाल सहगल ईरा से अभी अरिजीत सिंह के ईरा तक के गाने सुनता हूँ, तो वही मुझे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद।

0: और इस सुमधुर गीत के बाद फिर लौटते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और अपने विषय मैदान से पोडियम तक की तरफ। और राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीवी सिंधु की जापान की सफलता का जिक्र किया और वो जीत सचमुच अविस्मरणीय रही, क्योंकि किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन में ट्रॉफी जीती है। सिंधु की ये जो जीत रही, इसने ट्रॉफी का जो एक लंबे समय का उनका सूखा था, न सिर्फ उसको खत्म किया बल्कि एक उम्मीद भी जगाई है। उनकी इस सफलता से आप कितने प्रभावित हुए हैं?
1: कोई भी खिलाड़ी जब ऐसा प्रदर्शन करता है या करती है, जाहिर सी बात है देश का हर वो व्यक्ति खुश हो जाता है, खास करके पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी की बात करें, क्योंकि आप देखिए उनके पास 5 विश्व चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो चैंपियन भी रही है, उसके अलावा उनके पास 2 ओलंपिक पदक भी है और बेहतरीन खिलाड़ी रही है, कई सालों से भारत का रिप्रेजेंटेशन करते आई है और 2 साल से उनके पास कुछ था नहीं।

0: दिखाने के लिए, सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में, फर्स्ट राउंड में. जब हार एक खिलाड़ी के पीछे लगातार पड़ जाती है तो उस खिलाड़ी के अंदर शंका पैदा हो जाती है कि एम आई गुड इनफ, क्या मैं अभी भी अच्छा खिलाड़ी हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ. वो शंका को दूर करने वाली बात हो गई टोक्यो में. और जापान में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सिंधु के लिए. शादी के बाद एक महिला खेल सकती है, उन्होंने दिखाया है, टोटल फोकस के साथ दिखाया. हम सबके लिए एक सबक है कि किसी को राइट ऑफ ना करें. शायद उनमें से मैं भी था कि सिंधु पे डाउट होने लग गया कि सिंधु अभी आगे करेगी क्या, सिंधु के बाद कौन होगा, ये सारे सवाल आ गए थे. लेकिन सिंधु ने एक बार फिर अपने और ध्यान को आकर्षित किया है. टेरिफिक परफॉर्मेंस, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सिंधु एक प्रेरणा है और हमेशा रहेगी
1: जी. और मैंग जी, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि सिंधु से हम लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं, एक आदत सी हो गई उनकी सफलता की, उनकी ट्रॉफियों की. पिछले कुछ वर्षों में अगर हम खासतौर पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो पीक पर अपने नजर नहीं आ रही थी. तो ऐसे में जापान ओपन की ये जो कामयाबी है उनकी वापसी की तरफ इशारा करती है, या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि देश के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुकी.
2: नहीं, बिल्कुल मैं राजा राम जी की बात से सहमत हूँ. इसको वापसी ही मानेंगे हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं. और मैं आपको कुछ अंदरूनी जैसी बातें बता सकूं तो सिंधु बहुत फोकस्ड प्लेयर है
1: जी.
2: और सिंधु की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो लाजवाब है. मानसिक क्षमताओं में भी उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, उसका फोकस बहुत बड़ा है. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हमारा बेंगलुरु केंद्र है, रीजनल सेंटर, वहां के जो स्पोर्ट्स साइंस सेटअप है, मैंने एक बार वहां पे देखा था, सिंधु आई थी, उनका फोकस एकदम क्लियर है कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, इसका क्या है. उन्होंने बकायदा चेकअप कराया, उसका एक सोल्यूशन निकलवाया और उस चीज पे वर्क किया. तो अगर ये खिलाड़ी इतने अनुभवी होने के बाद ये इस स्तर पे स्पोर्ट्स साइंस के लेवल पे इस चीजें सोच रहे हैं तो ये उनका फोकस, उनका एक ये दिखाता है कि वो उसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं. मुझे लगता है कि सिंधु में भी मतलब एलिट 28 तक मुझे वो काफी सक्रिय और काफी सक्सेसफुल दिखाई देती है.
1: जी, और राजा रमन जी, साल 2028 ओलंपिक ईयर है, ऐसे में 31 साल की 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु के लिए टूर्नामेंट को चूज करना और अगले 2 सालों तक फिटनेस को बनाए रखना कितना जरूरी है.
0: बहुत जरूरी है धर्मेंद्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि प्लेयर के सामने चुनौती है. लगातार टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं रैंकिंग पॉइंट्स जमाने के लिए और रैंकिंग बना के रखने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ओलंपिक गेम्स में क्वालिफिकेशन रैंकिंग के बदौलत होती है. अगर आप टॉप 16 में है तो आपका गारंटी स्पॉट बन जाता है, उसके बाहर होते हैं तो मुश्किल होता है आपका क्वालिफिकेशन, क्योंकि कम खिलाड़ियों को बुलाते हैं, कुछ कोटा देना पड़ता है. या तो फिर आप एशियन गेम जीत के दिखा दें, या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, या फिर टॉप रैंकिंग में बने रहे. तो सिंधु के सामने एक चुनौती रहेगी कि अपना रैंकिंग बना के रखना होगा और इसके लिए लगातार खेलते रहना पड़ेगा उन्हें. और दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि एक तो उम्र उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में चैनलाइज करके सिंधु इज फेसिंग द चैलेंजेस. और मुझे पूरा विश्वास है कि लॉस एंजलिस 2028 तक वो रैंकिंग भी बना के रखेगी और फिर वहां पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी करेगी.
1: बैडमिंटन से जो है एक और सवाल है कि भारत में जो है बैडमिंटन की बेहद मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को खासकर महिला बैडमिंटन के जरिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एक बड़ा ऊंचा मकाम दिया है. उस स्तर को बनाए रखने के लिए बैडमिंटन की नई पौध मयंक जी कितनी दमदार दिखाई देती है.
2: बैडमिंटन में बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं. आपने तो केवल महिला खिलाड़ियों की बात की, पर मुझे लगता है कि पुरुष खिलाड़ी भी इसमें कम नहीं है. बहुत सारे अभी खिलाड़ी अंडर 18 खालिया एक टूर्नामेंट हुआ है, उस टूर्नामेंट में उस अंडर 18 प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. बॉडीली भी वो बहुत अच्छा एडवांटेजियस पोजीशन में है. इसके अलावा जो आपने बात की कि महिला खिलाड़ी विशेष रूप से ज्यादा उनके अंदर संभावना है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ. मैंने जितना इन लोगों का प्रदर्शन देखा है, न सिर्फ प्रदर्शन की बात है, जिस प्रकार से अपने खेल को ये अप्रोच करती है, जिस प्रकार से अपने खेल को सीरियसली लेती है और जिस प्रकार से इनका फोकस है, ये सभी खिलाड़ी, मेरा काडर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ऐसे खिलाड़ियों को देख करके, अभी गुवाहाटी कुछ दिन पहले मैं गया था जहाँ पे एक बहुत अच्छी एकेडमी है और कोरियन, रशियन और मलेशियन कोच वहाँ पे हैं, जिनके भाई जो है BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कराती है अपने प्लेयर्स को. तो यू नो, इनका फोकस देख कर, उनका प्रोफेशनलिज्म देख करके और उनका एम्बिशन देख करके मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एशियन गेम्स में कुछ सरप्राइज भी हो जाए. मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें भी कुछ सरप्राइज हो जाए.
0: मैं आपको बता दूं
1: जी,
0: उन्नति हुडा जैसी प्लेयर उभर कर आई है, अस्मिता चलिहा जैसे प्लेयर उभर कर आई है, और न सिर्फ सिंधु और साइना नेहवाल की

0: बात कर सकते हैं, हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोन्नाप्पा की भी बात कर सकते हैं, और गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली, ये भी दुनिया में अच्छा प्रदर्शन देते आए हैं। खिलाड़ी को चोट लगता है, कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, लेकिन भारत का बैडमिंटन बहुत अच्छे हेल्थ में है। मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा डाउट होता है कि सिंधु के बाद कौन, लेकिन ये युवा खिलाड़ी आई है, ये जवाब दे रही है हम सबको।
1: मैं इसमें चिराग और उसको भी हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
0: सात्विक साईराज,
1: सात्विक और चिराग को आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
0: लक्ष्य
1: वो
0: सेन खेल ही रहा है अच्छे से।
1: लक्ष्य सेन भी अच्छा खेल रहा है, और अभी भले उसकी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उसने, लेकिन ही इज स्टिल इन द फ्रे, एंड चिराग और ये लोग तो बहुत अच्छे उसमें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे एशियन गेम्स में। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बिल्कुल इसका एक मुजाहिरा जरूर देखेंगे वहां।
2: बिल्कुल। अब आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुनते हैं। राजा, अब आप बताइए कि आपकी पसंद का वो कौन सा गीत सुना जाए।
0: मयंक जी ने मुकेश जी का गाना चुना था, मैं भी मुकेश जी का ही गाना चुनूंगा। मेरे से भी पहले एक गाना था जो आज भी मेरे ख्याल से हम सबके लिए रेलेवेंट है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: वाह, क्या बात है।

0: होती है।
1: दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात में खेलों के बारे में की गई चर्चा की। हमारे आज के दो मेहमान हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। राजा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में लॉर्ड्स मैदान में खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम की शानदार सफलता का जिक्र किया था। इसे उन्होंने भारतीय पुरुष टीम की 1983 की विश्व कप की विजय से जोड़ा। ये जुड़ाव स्वाभाविक भी है क्योंकि उस कामयाबी के बाद हमने दुनिया को अपनी क्रिकेट महाशक्ति होने का एहसास कराया था। महिला टीम की टेस्ट क्रिकेट में ये जीत उसे इस लॉन्ग फॉर्मेट का सुपर बनाने की दिशा में कितना मदद करेगी?
2: बहुत ज्यादा। मुझे ये लगता है कि भारत कई सालों से महिला क्रिकेट की अगर बात करें

0: तो टेस्ट मैचेस की ओर ध्यान नहीं दिया था और लॉर्ड्स में जाकर टेस्ट मैच खेलना और पहले ही मैच में मेजबान इंग्लैंड को पराजित करना, ये बहुत बड़ी बात है और दिखाता है कि हमारी महिला टीम के अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो बिलीफ है, जो एक स्वाभिमान वाली बात है, ये बहुत अच्छी बात है तो देखने को मिला है। वहां पे शतक भी जड़े हैं हमारे खिलाड़ी, 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स वाली भी बात हुई है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला ही मैच जीतना, हालांकि कंपेरिजन गलत होगा, लेकिन पुरुष टीम की अगर बात करें, कई साल लग गए भारतीय पुरुष टीम को टेस्ट मैच जीतने में लॉर्ड्स में, और महिलाओं ने वो कर दिखाया कि हम इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड को हराएंगे।
1: राजा, वनडे विश्व कप जीतने और लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट जीत के बाद महिला टीम की सोच और अप्रोच में कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम में सोच और अप्रोच दोनों सही थे, लेकिन अब विश्वास बढ़ जाएगा कि हम दूसरे देश के मैदान में, वो भी सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से माना जाता है, इट इज नोन एज द होलीएस्ट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, वहां पे जाके जीतना पहले ही मैच में, टीम का हौसला बुलंद हो जाता है। पहले से बुलंद है, विश्व चैंपियन रही है भारतीय टीम, लेकिन इंग्लैंड में जाकर जीतना हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है कि ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड को हराना, देयर इज अ स्पेशलिटी टू इट। और मुझे लगता है कि महिला टीम ये कर दिखाई है और फिर उनके अंदर जो हौसला अफजाई चाहिए था उन्हें खुद उन्होंने ढूंढ के निकाला और फिर सबको दे भी दिया है।
1: और मयंक जी, प्रधानमंत्री जी ने खेल के मैदान पर नारी शक्ति का भी अपनी बातों में जिक्र किया, तो स्वाभाविक भी है क्योंकि नारी शक्ति की वजह से ही हम ग्लासगो में 13 गोल्ड मेडल जीत कर मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच सके और उसमें 8 गोल्ड मेडल महिलाओं के थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम खेल महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है।
2: ये बात न सिर्फ मौजूद है, रेलेवेंट है, बल्कि ये बात बहुत एक तरह से कह लें कि ये टैक्ट फुलनेस की भी बात है, ये एक रणनीति की भी बात है। मैं ऐसे ही एक बार अध्ययन कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओलंपिक खेलों में पहले दूसरे उस पर रहते हैं, इनका क्या है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनके स्वर्ण पदकों का, और मैंने पाया कि इनके अधिकतर जो पदक हैं वो महिला खिलाड़ी जीत रही हैं। और कुछ ऐसा अभी भी पूरे विश्व में जो वातावरण है, खेल परिदृश्य जो है, मैं समझता हूं कि भारतीय महिला खिलाड़ियों का जो अभी पूरी क्षमता का निर्माण नहीं हुआ है, अब ऑब्वियसली उसमें लग गए हैं और इसमें बहुत स्कोप है। हमने यदि महिला खिलाड़ियों को सशक्त कर दिया और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दी, तो निश्चित रूप से हमारा वो जो लक्ष्य है कि हम 2036 तक पहले 10 खेल महाशक्ति होंगे, वो बिल्कुल संभव है। और आपने जो उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वो एक फैक्ट तो है ही है कि 13 में से 8 मेडल जो है वो महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप अगर विश्लेषण कीजिए पिछले कुछ सालों में रेसलिंग में, जो कि हमारी वैसे भी ताकत रही है, हमारा पहला जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो भी रेसलिंग में मिला था, पुरुष खिलाड़ी ने दिया था, पर अगर आप अभी आप देखें तो महिला रेसलर्स जो हैं उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, महिला बॉक्सर्स उनके अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। सबसे बड़ा सुखद क्षण मुझे लगा इस कॉमनवेल्थ में वो जूडो में खिलाड़ियों का आगे आना। जूडो एक ऐसा खेल है कि जिसमें हम लोग संभवतः पहली बार ऐसे मेडल जीते हैं और उसमें भी महिला खिलाड़ियों का ही प्रमुखता रही है, और ये बहुत ही अच्छा एक सुखद संकेत है आगे आने वाले समय के लिए। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये मेरा मानना है कि महिला खिलाड़ी न सिर्फ अभी योगदान दे रही हैं, बल्कि आगे भी हमारे खेल परिदृश्य में बहुत अच्छा योगदान करने वाली हैं।
1: और राजा, खेलों को आम जन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी छोटी जगहों और छोटी घटनाओं का भी जिक्र करते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने केरलम के एर्नाकुलम के स्कूल के संस्कृत शिक्षक की फुटबॉल पहल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरक उदाहरण आम लोगों के मन में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए कितने अहम होते हैं?
0: बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो खेल की ओर ध्यान देते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है 2020 का और जो अभी स्पोर्ट्स का पॉलिसी बना है, इसमें खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाने का, मिश्रण बनाने का एक प्लान है, तब जाके भारत का खेल आगे बढ़ेगा। और उनका ध्यान देखिए एक अध्यापक पे गई है जहाँ पे वो संस्कृत को यूज करते हुए खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करती है। हालांकि केरला में फुटबॉल के लिए कमी नहीं होती है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन एक और महिला है जो साड़ी पहनकर कोचिंग करती है। फुटबॉल की ही बात करें अगर, हालांकि कईयों को पता नहीं है ये, अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें, हमारे महिला टीम, फुटबॉल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, उनका बहुत बेहतर रैंकिंग है व्हेन कंपेयर टू मेन, और हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को। बहुत बेहतरीन प्लेयर्स आए हैं और जाहिर सी बात है कि एक अध्यापक अगर संस्कृत को लेके खिलाड़ियों को संस्कृत और

0: खेल दोनों को मिला के एक अच्छा मैसेज, और ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है
1: जी.
0: और ही हैज ओनली एलोबरेटेड इट, और ये अच्छी बात है. और भी अध्यापक में एक जोश और ऊर्जा पैदा हो जाएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि उनकी नजर हम पे भी पड़े.
1: जी, सवालों और जवाबों का ये सिलसिला तो जारी रहेगा. फिलहाल बारी है एक और गीत की. मयंक जी, अपनी पसंद का एक और गीत बताइए.
2: इस बार थोड़ा सा नया गीत बताता हूँ.
1: जी.
2: दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू.

0: प्रधानमंत्री जी की बात पर लौटते हैं, जो देश में खेलों के विकास और भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए बेहद गंभीर हैं। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही 2036 में हमारी ओलंपिक मेजबानी की भी योजना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। मैन जी, इस संशोधित खेलो इंडिया योजना का प्राइमरी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और जो पैसों का आवंटन है वो किस तरह से किया गया है?
1: संभवतः हमारी किसी बात में ये जिक्र आया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि 2036 तक हम खेलों में प्रथम 10 स्थानों पर रहने वाले देश बन सके, 2047 तक हम प्रथम 5 देशों में से एक हों, ऐसा एक बृहद लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा खेलो इंडिया जो योजना है उसके बारे में बताया था कि कैसे वो 720 डिग्री सपोर्ट देती है और 360 डिग्री सपोर्ट के आगे वो कोच की भी बात करती है, स्पोर्ट साइंस की भी बात करती है, आईटी सपोर्ट की भी बात करती है, हर जिले में और स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल की बात करती है। इसके अलावा जो राज्य के साथ भागीदारी में अधोसंरचना की बात करती है, जिसमें केंद्र सरकार 60% योगदान देगी और राज्य सरकारें 40% और नॉर्थ ईस्ट में 90% तक का योगदान भारत सरकार देगी। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग इकोसिस्टम खड़ा किया गया, जिसमें साई के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अंग है, एनसीओई, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का भी एक पूरा एक वो चलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं पहले बात किया था, KISC, OKIC, वो तो रहेंगी। तो एक पूरा एक अधोसंरचना, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम हर क्षेत्र में इसमें आ गया। जहां तक पैसों के आवंटन का प्रश्न आपने किया है, तो पैसों का आवंटन अभी इसको बोल सकते हैं कि अभी फ्लूइड है और आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा, जो एक तरह से कह लें कि एलोकेशन इसमें आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। निश्चित रूप से जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी एलिमेंट है, उनमें चूंकि उसका संगठन ऐसा होता है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो निश्चित रूप से वहां पे ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन जो लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग में खर्चा करने का, एथलीट के ऊपर खर्चा करने का, और अकेडमिक या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बनाना है उसमें खर्चा करने का।
0: जी, तो राजा रमन जी, खेलो इंडिया के नए स्वरूप के तहत खिलाड़ियों को मिलने वाले साइंटिफिक ट्रेनिंग में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि ट्रेनिंग भी एक फोकस विषय है इस संशोधित खेलो इंडिया का।
2: धर्मेंद्र, जितना भी मैं खेला हूं और देखा हूं, करीब 50 साल तो हो गए होंगे इन सबको, स्पोर्ट्स साइंस का बहुत जरूरी होता है। अभी तक बहुत कम यूज हुआ है स्पोर्ट्स साइंस, हम सिर्फ एलीट लेवल पे यूज करते आए हैं स्पोर्ट्स साइंस को। मैंग जी ने कोचिंग की बात की, कोचेस हमारे पास कम है जो विश्व स्तर का कोचिंग कर सके, जो स्टैंडर्ड कोचिंग करें, ताकि जो खिलाड़ी मैदान में सीखता है, बेसिक्स जहां पे उसके पढ़ते हैं, फंडामेंटल जहां पे आते हैं, अगर वहां से उठना है तो वो फंडामेंटल सही पढ़े। फाउंडेशन अगर सही गिरता है, नींव अगर सही पड़ता है, तो आगे चल के वो स्टार बन सकता है। धर्मेंद्र, आप भी सुन चुके होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचेस आते हैं वो कहते हैं कि आपका टेक्निक ही गलत है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिखाना पड़ता है कि टेक्निक कैसे सुधारा जाए। अगर हम इस पे फोकस करते हैं, और अब फोकस आ रहा है, कोचिंग और स्पोर्ट्स साइंस दोनों में फोकस आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो खेलो इंडिया के ट्रेनिंग फैसिलिटीज होंगे हर जिले में होगा, और हर स्कूल में शायद एक अच्छा सा कोच होगा जो स्पोर्ट्स साइंस को समझ सके। जब तक आप इसको जोड़ नहीं लेते, आपके खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से झिझकते हैं, कि वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्यों जाएं, हमें कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी तो नहीं है। ये सब बदल रहा है और ये नया देश देखने को मिल रहा है। हमारे खिलाड़ी फियरलेस होते जा रहे हैं, उनके अंदर जो डर था वो दूर हो रहा है, और वो चाहते हैं कि दुनिया को जाके कॉन्कर कर आए और फिर अपने घर में राज करें। दे आर सेलिब्रेटेड, और हम क्यों ना पूजे उनको। वो ऐसे इंसान है जो विदेश में भी हमारे झंडा को लहरा के आते हैं। बहुत कम लोग कर सकते हैं ये काम, और खिलाड़ी ही करते हैं, लगातार करते हैं। क्या कहूं, राष्ट्रगान जब बजता है विद द फ्लैग गोइंग अप, चाहे वो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, रोंगटे खड़े होते हैं, और ये खिलाड़ी ही कर सकता है। अगर 20 मेडल चाहिए, 30 मेडल चाहिए, हमें चाहिए कि ग्रास रूट में स्पोर्ट्स साइंस लाएं, और ये खेलो इंडिया मिशन का एक बहुत अच्छा फोकस है कि कोचिंग भी सही हो और फिर स्पोर्ट्स साइंस भी सही हो।
0: मैन जी, इस संशोधित योजना में प्रतिभाशाली एथलीटों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए गए हैं?
1: जहां तक नियमों का सवाल है, नियम तो लगभग वही रहेंगे। नियमों से परे जो चीज हुई है, जो क्रांति इसमें हुई है, पहले हम मात्र 3,000 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया

0: स्वीट बनाते थे और उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस और जहां पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते थे। अब ये संख्या बढ़ के 30,000 हो जाएगी।
1: जी
0: 30,000 लोगों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलेगा। वो जिन संस्थानों में अभ्यास करते हैं उन संस्थानों को इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में और अनुकूल सहायता देने के लिए वो जो वित्तीय सहायता थी वो मिला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 8 गुना वृद्धि हुई है टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन में और 10 गुना वृद्धि हुई है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बकेट में। 10 गुना अधिक खिलाड़ियों को डायरेक्ट सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि मिला करेगा।
1: स्पॉन्सरशिप बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि मयंक जी ने बताया कि जो स्कॉलरशिप है उसके लिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसका कितना पॉजिटिव असर खेलों पर खिलाड़ियों पर पड़ेगा?
2: बहुत ज्यादा पड़ेगा और एक विश्वास बढ़ जाएगा खिलाड़ी के अंदर। और जो हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुझे चोट लग गया, मैं बीमार हो गया या खेल से बाहर हो गया तो मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब अब शायद मिलने लगा है खिलाड़ी को। वो निडर होकर खेलने लगे हैं धर्मेंद्र। और मुझे लगता है कि जो खेलो इंडिया का स्कॉलरशिप स्कीम है, अगर 3,000 से बढ़कर 30,000 खिलाड़ी तक जा रहा है
1: जी
2: तो आपका जो बेस है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि क्रीम और बेहतर होगा आगे चल के। 2036 की ओर ध्यान है, आज शुरू करना चाहिए और शुरू हो गया है। अच्छे नतीजे आएंगे, वी विल सी वेरी गुड रिजल्ट। और मेरा यह मानना है कि हर वो एंगल कवर्ड है, पॉजिटिविटी भरा हुआ है देश के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर और भी ज्यादा हुआ है। मेरा यह मानना है कि अगर उसको सही दिशा दे, सही चैनलाइज करे तो हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल के देशों में हम एक जरूर बन सकते हैं।
1: और मैं जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमने खेलो इंडिया स्कीम से निकले खिलाड़ियों का जलवा देखा, ढेर सारे मेडल खेलो इंडिया के खिलाड़ियों की तरफ से आए। जो प्रदर्शन रहा है अद्भुत रहा है, क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, वो जो आपने शुरू में एक स्लोगन कहा था मैदान से पोडियम तक का, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया था आपने उसे दोहराया। तो ये खेलो इंडिया इस कॉमनवेल्थ गेम में आप बिल्कुल इसको फलीभूत होते हुए देख पाएंगे। 122 खिलाड़ी थे, उनमें से 70 खिलाड़ी खेलो इंडिया से किसी न किसी रूप में संबद्ध रहे हैं। और जो मेडल विनर्स थे, 39 मेडल्स हमारे आए, 39 मेडल्स में से 16 मेडल्स, 16 पदक
1: जी
0: वो खेलो इंडिया से संबद्ध खिलाड़ियों के रहे।
1: जी
0: तो आप देख सकते हैं कि वो जो मैदान से पोडियम तक यहाँ पे एकदम साकार हो रहा है, एकदम फलीभूत हो रहा है।
1: जी और राजा, कहते हैं कि खेल प्रतिभाएं वो गांवों में भी बहुत छुपी हुई हैं और उनके पहचान की आवश्यकता है। वहां से बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी निकलकर सामने भी आते हैं जिन्होंने देश के लिए ढेर सारे मेडल जीते हैं। अभी इस दिशा में खेलो इंडिया के तहत और कितना काम करने की आवश्यकता है?
2: धर्मेंद्र, मेरा यह मानना है कि भारत के जो मेडल्स अभी तक आए हैं वो हिंटरलैंड से ही आए हैं। ज्यादातर आप खेलों में देखें तो वो खिलाड़ी रूरल एरिया से है, बैकवर्ड एरिया से है। उनके अंदर एक भूख है जो शायद शहरी खिलाड़ियों में कम है। मैं नहीं कह रहा कि शहरी खिलाड़ी कम है, किसी स्तर पे भी कम है, लेकिन भूख उनके अंदर ज्यादा दिखता है। और इनको खोजने में जो खेलो इंडिया का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम है ये अभी मदद करेगा। मेरा ये मानना है कि खेलो इंडिया के जो अधिकारी है उनको समझ आया होगा, 2 साल पहले उन्होंने एक स्कीम चलाया था उसमें से सीख मिली होगी। कीर्ति स्कीम था, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, उसमें से कुछ सीख मिला होगा। और आगे जो करना है हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में, इसमें सुधार लाकर अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो
1: जी
2: 30,000 खिलाड़ियों की बात हो रही है खेलो इंडिया स्कॉलर्स की, ये हमारा भविष्य होंगे। और मेरा ये मानना है कि ये सारे अच्छे खिलाड़ी होंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स भारत के लिए लेकर आएंगे आगे चलकर। ये कोई भी देश में ये होता है धर्मेंद्र, के आज अगर आपके पास 30,000 खिलाड़ी हैं वो सारे 30,000 वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेंगे, उनमें से छाट कर आपको 30 वर्ल्ड क्लास एथलीट मिलेंगे। अगर आपके पास बेस 3,000 का ही है तो 3 खिलाड़ी आपको मिलते हैं। अच्छी बात है कि बेस हम बढ़ा रहे हैं और वहां से हमारे खिलाड़ी उभर कर आएंगे और विश्व स्तर पर अच्छे चैंपियंस बनेंगे और फिर गर्व से हमारा दिल धड़कने लगेगा।
1: और मैं जी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स जो है देश में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक आए हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
0: टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है भारत सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू की थी कि जो हमारे एलीट एथलीट हैं, एलीट एथलीट का आशय उन एथलीट से है जिनको कि हम ये मान करके चलते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा है और उनकी स्किल लेवल इतनी अच्छी है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स गेम्स, इस तरह के जो टॉप नॉच जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये भारत को पदक दिलाने में सक्षम है, तो उनको इस तरह की कोई असुविधा का सामना न करना

0: पड़े, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल ना फेस करना पड़े, कोई अन्य गतिरोध ना फेस करना पड़े, ट्रेनिंग का हो, चाहे जगह का हो ट्रेनिंग के लिए, चाहे ट्रेनिंग के लिए सामानों का हो, या जो रिकवरी का हिस्सा है ना, मतलब उनके जो मैसर्स होते हैं, उनके जो फिजियो होते हैं, इन सभी की दृष्टि से उनको कोई ऑब्स्टिकल का सामना ना करना पड़े और कोई उनके पास कमी ना रह जाए, इसलिए टॉप्स जो है स्कीम लाई गई थी। और इसमें ऐसे एथलीटों का चयन किया जाता है, एक समिति होती है जो साई में कार्य करती है, उस समिति में रिनाउंड प्लेयर्स हैं, रिनाउंड कोचेस हैं, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भी रिनाउंड जो पुराने लोग हैं वो लोग हैं, और ऑफ कोर्स अधिकारी ही हैं, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीईओ टॉप्स एक अधिकारी है जो कि वर्तमान में कर्नल जोहल हैं, जो स्वयं भी ओलंपियन रह चुके हैं। तो ये अधिकारी जो है उनके अधीन ये समिति उनका निर्धारण करती है, उनके पैमाना बना होता है कि किस प्रकार के लोग इसमें टॉप स्कोर एथलीट बनेंगे। टॉप स्कोर एथलीट को ज्यादा स्कॉलरशिप बोल लें, अलाउंस बोल लें, वो मिलता है। एक टॉप्स डेवलपमेंट है जिनको हम दूसरी रंग मान सकते हैं कि ये कोर से तुरंत ही कोर बन सकते हैं, इनके अंदर भी मेडल क्षमताएं हैं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलता है। और जो बाकी सुविधाएं जैसे मैंने आपको बताया, जितनी चीजें स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे उनकी रिकवरी के हिस्से हो, चाहे उनके स्पोर्ट्स का सामान हो, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण के लिए नीरज चोपड़ा जैसे, तो साउथ अफ्रीका में जो उनकी ट्रेनिंग थी उसकी फंडिंग टॉप्स के द्वारा ही की गई थी। तो इस प्रकार से एलीट एथलीट को सहायता देने का एक प्रयास टॉप्स के माध्यम से होता है, और आप देख रहे होंगे कि एलीट एथलीट के हिसाब की ही चीजें उनको प्रदाय की जा रही है। जैसे नीरज चोपड़ा ने कहा था कि साउथ अफ्रीका में वो प्रैक्टिस कर सके, तो वो सुविधा उनको टॉप्स के माध्यम से प्रदान की गई थी।
1: मयंक जी ने नीरज चोपड़ा की बात की, मैं मीराबाई चानू की बात करूंगा आपसे। मीराबाई चानू को चोट लग गया था, बैक में प्रॉब्लम था। मैं 2021 ओलंपिक गेम जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुआ है, उस गेम की बात कर रहा हूँ। मीराबाई चानू को वहां पे मेडल मिला था, हम सब जानते हैं। लेकिन 3 महीने पहले मीराबाई चानू को चोट लगी थी और डाउट्स हो गए थे कि इनका क्या होगा। टॉप्स के सपोर्ट से वो गई अमेरिका, सेंट लुइस। वहां पे स्कॉट यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर है जिन्होंने उनका इलाज किया और उनका स्क्वाट लिफ्टिंग भी इम्प्रूव कर दिया, और तब जाके ओलंपिक में मेडल मिला है। कई सारी बातें टॉप्स की, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसकी हमारे सामने आती नहीं है, लेकिन जरूरी है कि जब खिलाड़ी को मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे मीराबाई चानू को ऐन वक्त पे पड़ गई थी और किसी का भी क्लियरेंस का टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। एक टाइम था जब मीराबाई चानू चिट्ठी लिखती थी, 3 महीने वेट करो, फिर उसके बाद क्लियरेंस हो ना हो पता नहीं, तब तक आपके पीठ का क्या हाल हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन ये मेडल अगर किसी को जाता है, हालांकि मीराबाई चानू के हुनर को जाता है, उनके कोच को जाता है, लेकिन अगर कहीं क्रेडिट जाना पड़ेगा किसी को तो वो टॉप्स को जाता है।
2: और राजा, इतनी सारी बातें हमने कर ली, सुना आप गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं।
1: नहीं, गाता तो नहीं हूँ, और मैं श्रोता को डराना नहीं चाहता हूँ धर्मेंद्र, लेकिन खेल का जो मुहिम है, 1958 में एक ऐसा खिलाड़ी भारत के अंदर एक जोश पैदा कर दी, मैं मिल्खा सिंह की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में जितना उनका तारीफ की जाए कम, वो फौजी रहे, बड़े मुश्किल परिस्थिति से उभर कर आए और फिर चल के कॉमनवेल्थ का मेडल जीता उन्होंने, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं, और रोम ओलंपिक्स में 4th प्लेस फिनिश किया उन्होंने। उनके एक बायोपिक बना था, भाग मिल्खा भाग, उसमें एक बहुत बेहतरीन गाना है जो आज भी हम सबको प्रेरित करेगा, हम सबको दिखाएगा कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे हैं।
2: जी, वो कौन सा गाना है जो सुनना चाहते हैं?
1: भाग मिल्खा भाग।

0: तो ये गीत भी हमने सुन लिया। सच कहें तो नए भारत में खेलों के मैदान पर सफलता का सिलसिला जारी है और ये दौर लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। खेलों के मैदान से पोडियम तक पहुंचने के लिए नई बुनियाद खड़ी की जा रही है, कामयाबी की नई कहानी लिखी जा रही है। खेल को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारे कदम आगे बढ़ाने हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, अपने बच्चों को भी खेलों के लिए प्रोत्साहित करें और प्रेरित करें। मैदान मार रहे अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कोई कसर न छोड़ें, तभी मैदान से पोडियम तक पहुंचने का हमारा ये महाअभियान पूरा होगा। तो मयंक श्रीवास्तव जी, खेलों के क्षेत्र में भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से किए जा रहे प्रयास के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: जी। राजारमन जी, खेलों में भारत के वर्तमान और भविष्य पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच धर्मेंद्र।
0: तो अब कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सबसे लेता हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
5: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் 111.

स्थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: ஆகாஷ்வாணி மதுரை எஃப்எம் 103.3 மற்றும் ராமேஸ்வரம் எஃப்எம் 100.9 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
1: நேரம் 9:00. ஆகாஷ்வாணி மதுரை பண்பலை 103.3 MHz மற்றும் ராமேஸ்வரம் பண்பலை 100.9 MHz தொடர்ந்து கேட்கலாம். சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகத்தின் நீதித்துறை வழங்கும் விளம்பரதார நிகழ்ச்சி பகுதி 8.
2: We bring you a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One-Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member One-Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है. तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का. और ऐसा तो नहीं है. तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है. और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं. तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है

0: मजा लेना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन ब दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफ़ी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ ज़रूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए, तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करें, और अब आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी ज़रूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे नाते रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं, या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: है तार टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with a talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry ki scheme hai, ye Mahila Evam Bal Vikas Mantralaya ke antargat aati hai aur iske overall India mein 700 se 800 centers run kar rahe hain. Delhi mein hi 11 centers hain aur ye जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं. सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है. कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है. हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा. वो बहुत ज़्यादा घबराती हैं इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं. मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ. सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं. साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं. ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं. सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है. उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी. और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से कोई निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है. मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े. उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है. वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर. वो वहाँ पर उसकी कंप्लेंट लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है वो उसको बहुत ईजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं. साथ ही वहाँ पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है. कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है. आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर, 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहाँ पर आ सकते हैं. और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं. उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं. 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हुए हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है. कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है. उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत ईजिली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है. सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिसे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है. जब हम उनको बताते हैं कि

0: इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में एनजीओ के साथ में या फिर हमारे जो लोकल एनजीओस वहाँ पे जो भी काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकते हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहाँ पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं, पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है, हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है, पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी और ये चीज़ हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस मतलब बहुत ईजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती हैं, कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा कैसी है, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: நேயர்கள், இதுவரை சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகத்தின் நீதித்துறை வழங்கிய விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள்.